परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना अंदर सतसंगत दियां अमोलक घड़ियां दी बख्शिश होई है। गुरु घर दी मर्यादा अनुसार कथा विचारां दा समा होया है। आओ मन चित बिरतियां एकाग्र करिए।

अंदर केड़ी गल नहीं लिखी। आखन लगे दुनिया की गल ते छड़ो, इत्थे ते आकाशां पातालां दा जिक्र है, खंडा ब्रह्मंडां दा जिक्र है, दुनिया की गल ते छड़ो। एक विद्यार्थी गुरसिख ने हाथ चुकिया, कहिंदा एक चीज नहीं लिखी। प्रोफेसर हैरान, बाकी विद्यार्थी हैरान, बई ऐसा की है जो इस विच दर्ज नहीं, दसो की नहीं लिखिया। एदे विच किसे कायर दी गुरबाणी दर्ज नहीं, एदे अंदर किसे बुझ दिल दी गुरबाणी दर्ज नहीं। अगर हुंदी फिर इस गुरबाणी नू पढ़ करके जा तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजा, सिर दीजा काण ना कीजा, ए खेड वर्तनी नहीं सी। फिर दम दमी टकसाल दे पहले मुखी ने सीस तली ते रख के हाथ विच दो धारा खंडा लै करके मुगलां दियां छातियां ते पैर रख के हरमंदर साहिब नू नहीं लंघना सी। जेकर दर्ज हुंदी दमदमी टकसाल दे दूसरे मुखी बाबा गुरबख्श सिंह ने अपना सीस लवा करके जंगे मैदान विच नहीं जूझना सी। जेकर किसे कायर दी गुरबाणी दर्ज हुंदी संगत जी, फिर दमदमी टकसाल दे चौदहवें मुखी ने दिल्ली दियां अखां विच अखां पाके गल नहीं करनी सी। ए गुरबाणी ते भय नू नाश करदी है। निरभउ जपै सगल भउ मिटै, ए गुरबाणी ते सूरमियां दी है। कबीर कसौटी राम की झूठा टकै ना कोए, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। जेकर किधरे गुरबाणी कैरां दी हुंदी संगत जी, झूठियां गुरबाणियां बहुत रचियां गईयां, फिर जिस दे नाल जुड़िए ओहो जिहा असर हो जांदा है। इथे पातशाह जी आप शहादतां पाउंदे ने, इथे गुरु तेग बहादुर साहिब जी आप बलिदान दिंदे ने, इथे मीरी पीरी दे मालक आप चार जंगा लड़दे ते दसवें पातशाह चौदह लड़दे ने। इसलिए जात गोत सिंघण की दंगा, दंगा ही सतगुर ते मंगा। अमृत वेले उठदा है मन रूपी घोड़े दे उपर, मर्यादा दी काठी पाउंदा है ते नाम दा कंडियाला घोड़े दे मुंह विच दे करके शरदा भावना दियां लगामां खिचदा है। पर संगत जी भगतां की चाल निराली, फिर निराली चाल चलाउंदा है अपने मन नूं, ते जिन्ना मना दे उपर कंट्रोल नहीं, काठी नहीं पाई, सवार उपर मौजूद नहीं, फिर ओ घोड़े मन मर्जी कर दे, ओ मन मन मर्जी कर दे। कबहू ना मन थिरता गही, समझायो सौ पोत, जैसे मरकट बिरश पर कबहू ना ठंडो होत। फिर ऐसी खेड बनदी है संगत जी, ए मर जीवड़िया दी गुरबाणी है भाई। इस नूं पढ़ करके फिर मर जीवड़े ही पैदा हुंदे ने। जिन्ना ने पढ़ना कीता है पर संगत जी ओ दिल्ली नूं घूरियां वटदे ने। संगत जी भाई हरदीप सिंह निज्जर वर्गे सेवा विच सिमरन विच पूर्ण सी, सुनिया है भाई दर्शन ते दास ने नहीं कीते, पर जिन्या नूं भी मिलिया हां सारे गुण ही गाउंदे ने भाई। पर संगत जी दिल्ली नूं ए चीज परवान नहीं, बई सिखी दा प्रचार प्रसार वधेरे होवे, जिमें बादशाह जहांगीर आखदा है कि साई मिया मीर सिख होया है, भाई मंझ जी सिख हो गए ने, चंदू दी लड़की दा रिश्ता मोड़ तोड़ दिता है, कवियां नूं परवान नहीं कीता ते कवि जा करके फिर दिल्ली दरबार दे अंदर बधा चढ़ा के दसन लगे, साडी बाणी प्रवान नहीं कीती, अपमान कीता, मुहम्मद साहब दी वडियाई नहीं कीती, इस्लाम नूं बुरा आख्या है। जेड़े झूठे हुंदे ने उन्हां दी कोलों गल्लां बनाउण दी आदत ही हुंदी है। संगत जी 84 दे अंदर भी जिन्ना ने पग्गां दे विच सिर पसाए सी, जा करके दिल्ली तख्त दे अगे ओ पग्गां रख दित्तियां सन।

गनौने काम माड़े दिल्ली ने इतने गनौने काम माड़े दिल्ली ने सिख जिंदे आगे लाके सारे दिल्ली ने सिख जिंदे आगे लाके

0: Zeppelin.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड से।
3: एक बारी सारी संगत शहीद जथेदार हरदीप सिंह निज्जर दी महान कमाई दा ध्यान करके प्यार नाल कुल सतनाम श्री वाहेगुरु मेरे सिर वक्त अपनी मंजिल ते चला गया। धन्यवाद प्रबंधक जना दा जना दास दे नमाणे जे जथे नु आप संगत दे दर्शन दी दार करवाए। धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिन्हें आप सारिया उद्यम उत्साह बख्शिश किया कि कौम के शहीदों आप याद करने संगत रूप में बैठो। जीव आया मेरे अजीज बरखरदार कवीशरी जी दुनिया के बहुत वड्डे हस्ताखर ज्ञानी सरूप सिंह सुरविंद ज्ञानी बलदेव सिंह बिंका तनंतर ने कवीशरी दे उन्हां ही परिवारों विचों मेरा अजीज बरखरदार भाई भगवंत सिंह सुरविंद क्या बात है जदों गाउंदा उड़दे पंछियों नूं रोक लैंदा कि मैनूं सुण के जायो इन्नी सुरीली आवाज इन्नी कशिश तेना दे साथी भाई बलजीत सिंह बगीचा बहुत लंबे समय तो जो आपसी इन्हां दा प्यार है सांझ है लामसाल है बहुत कमाल दे ढंग नाल जदों उह गाउंदे ने अपना प्रभाव छड्डदे ने संगतां दे दिलां ते राज करदे ने ते तीजे साथी भाई गुरचेत सिंह जी गिलदुबली क्या बात है जदों आवाज लाउंदे ने जिहड़ा आनंद तुसी माणदे हो उस आनंद नूं शब्दां विच बयान नहीं कीता जा सकता। ते चौथे साथी ने भाई गुरिंदर पाल सिंह जी बेंका मेरे मानयोग वड्डे वीर ज्ञानी बलदेव सिंह बेंका साहब दे लखते जिगर बेंका साहब बहुत रोशन दिमाग प्रचारक सन बहुत कमाल दीआं लिखतां ते गुरिंदर पाल सिंह बेंका भी उस तरीके नाल सेवावां करदे ने। मैं समुचे जथे नूं जीवां कहिंदा ते समुचे जथे दी चढ़दी कला वास्ते अरदास करदा आप जी दे प्यार दा हार्दिक धन्नवाद। समय की कुताही तो बचदा होया मैं आप जी नूं फतेह अर्ज करके आप जी कोलों असीस चाहुंदा हां। गुरु के वजीर साहिबान दा समुचे स्टाफ दा बहुत बहुत धन्नवाद। फतेह प्रवान करो सत्कार सहित आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।
4: वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ढाडी वारा राही पावन पवित्र इतिहास सरवण करवा रहे सन बहुत ही सत्कारयोग पंथ प्रसिद्ध ढाडी जथा भाई साहब भाई तरलोचन सिंह जी भमद्दी और उन्हां दे साथी समूह संगत वालों जथे का बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन चढ़दी कला बख्शिश करन इसे तरह ही कौम की पंथ की सेवा निभाउंदे रहन। सो खालसा जी आप जी ने सरवण किया जो भमद्दी साहब ने कलमबंद किया कि किस तरह दिल्ली की जिहड़ी हकूमत है वह सिखां दी वैर ने और अज तो नहीं सदियां तो यह सिलसिला जिहड़ा चलता आ रहा है और अगे भी खालसा जी इसे तरह सिलसिला जिहड़ा चलता रहना है क्योंकि जिन्हें भी सच ते पहरा देना है हकूमत ने हमेशा यतन करना है कि उहदी आवाज जिहड़ी है उहनू बंद किया जाए उहनू मार मुकाया जाए। सो खालसा जी जिस तरह भमद्दी साहब ने भी बेनती की है कि यह हुण असी सोचना असी अपने मनां दे विच झाती मारनी है कि असी केवल हाजरी भर के घरां नूं वापस परत जाना है जां पंथ की खातर कौम की खातर कुछ करना भी है कुछ उहदे विच अपना योगदान भी पाउणा है क्योंकि खालसा जी महाराज ने विदेशां दी धरती दे उत्ते असीं बैठे हाँ सुख सहूलतां महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू सारियां बख्शिश कीतियां होईयां ने और जे असीं फिर भी कौम की सेवा ना कर सके खालसा जी फिर एक साडे लई भी मैं कहना यह मंदभागी गल जिहड़ी होवेगी क्योंकि गुरु दियां बख्शिश कीतियां होईयां जो सारियां दातां ने जे उहदा ना शुकराना करदे होए फिर भी असीं कौम दी असीं पंथ दे विच कोई अपना योगदान ना पाईए तां खालसा जी इह साडे सारिआं लई बहुत माड़ी गल है। सो गुरु रहमत करे आओ जी बहुता समां आप जी दा नहीं लैणा क्योंकि बहुत ही सुरीले कवीशर अपने कोल पहुंचे हुए ने। सो बेनती है कि कल नूं खालसा जी जो 2 बजे तो लैके 5 बजे तक जो शहीदी कॉन्फ्रेंस जिस विच भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी मंड भाई जसपाल सिंह जी मंझपुर भाई मनिंदर सिंह जी सिख फैडरेशन वाले और भाई प्रभजोत सिंह जी जिन्हां ने हाजरियां भरनियां ने सो उहदे विच खालसा जी वध चढ़ के कल सारे ने हाजरियां भरनियां ने जो कि नाल दी बिल्डिंग है भाई साहब जी की यादगारी बिल्डिंग बनी हुई उस विच समान जिहड़े सजने ने और ऐतवार नूं खालसा जी 9 बजे तो लैके सवेरे तकरीबन 2 बजे तक

0: जिंदा दिल
1: जिंदा दिल सूर वीरां ने रोड़ी पई होवेगी पर साडी कौम दियां नीहां विच गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपना शरीर अपने शरीर दी चर्बी अपनियां पवित्र हड्डियां तदे तक कवि ने लिखिया है कि तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे करनी सबर दी दसी है जंग तैनू आश किसे ने चांदनी चौक अंदर मर के जून दा दसिया ढंग तैनू मस्ती लथी ना तेरी मस्तानिया होए दिता समे ने सूली ते टंग तैनू ज्यों ज्यों सड़े तू भट्ठियां विच पै पै त्यों त्यों चढ़े परवानिया रंग तैनू कोट कोट प्रणाम उस पातशाह महाराज दे मुबारक चरणा विच। आओ 6 जून 1984 दा इतिहास चल रहा सी सा संगत दसिया सी पहले दिन साडे भाजी होना ने भी तीन घले उकारे होए ने तीन घलू उकारे पहला होया कानू आन दी शंभ विच 1746 विच सा संग जी ओह बगानिया ने कीता दूजा घलू उकारा अबदाली ने कीता 1762 विच इन्ना वड्डा नुकसान मेरी कौम दा होया ते कहिंदे एक निहंग सिंह उठ के कहण लगा सी ओए अबदाली एक गल याद रख अजे भी मेरी कौम दा कुछ नहीं विगड़िया सतसंग जी उस कौम दे पल्ले की रहिंदा है जिहदा 35,000 माई भाई कोपरीड़े दे मैदान विच शहीद हो गया होवे पर उहदा जज्बा उहदा हौसला उहदे अंदर बाणी सतसंग जी बाणी ने अंदरों इन्ना उहनूं स्ट्रोंग कीता है उह कहिंदा ओए अबदाली एक गल याद रखी अजे ते खोट खोट ही झड़िया सोना अजे बाकी है यह दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा अजे बाकी है यह दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा अजे बाकी है यह दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा अजे बाकी है यह दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा अजे बाकी है यह दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा कि जित नहाता कौआ हंस हो है उस मुबारक स्थान दे उत्ते 6 लाख आर्मी ने सारे पंजाब नू घेर लिया जम्मू कश्मीर तो लैके राजस्थान दे बार्डर तक भी पाकिस्तान कोई मत ना इन्हां दी करदे गुआंढी देश है इन्हां दे संबंध अणसखावे ने और इन्हां दे संबंध चंगे ते साडे अणसखावे ने बड़िया सोचा सोच के साध सिंह जी ए हमला कीता गया और एदे विच जनरल रणजीत डियाल जिहड़ा नरक धारियां दा चेला है और एदे विच जनरल वैद्या जिहड़ा फौज दा मुखी है एदे विच कुलदीप राड़ जिहड़ा सत्कारयोग साध सिंह जी जिहड़ा सब तो वड्डा मास्टरमाइंड जिहनूं गिणिया जांदा है जिन्हें बड़ी झूठ दी एक किताब भी लिखी संतां दे खिलाफ पर उहनूं साडे खालसे ने चढ़दी कला दे नाल और उहदे विच कमियां कढ के संतां दी जो शहादत होई साध सिंह जी उहदे विच बड़ा कुछ तुसां उहदे विच तब्दीलियां कीतियां और नाल दे सूरमे हर्षपाल सिंह पीए वर्गे उन्हां महान योधियां ने बहुत कुछ दस्या बाहर आके। खैर आओ समा ज्यादा हो जाणा सिंह साहब ज्ञानी लखविंदर सिंह होणी हजूरी कीर्तनीए सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुंच चुके ने एक कविता कह के मैं समाप्ति कर देनी है। इन्हां ने आख्या ऐ संत जी ओ बाहां खड़ियां बाहर करके आ जाओ असी ओ फौज हां जिन्हां ने 62 दा जंग और जिन्हां ने 71 दा जंग पाकिस्तान नूं लोहे दे चने चबा दित्ते पर इन्हां नूं भुलेखा सी ओ जंग साडे सिखां करके जित्ते सन क्योंकि जदों इंदिरा गांधी ने जनरल हरभगत सिंह नूं कहा सी ना भी पिछे आ जाओ सरहद आपां ब्यासा बना लैने आ उस महान योधे ने आख्या तेरा भला होवे साडा ननकाणा साहिब अगे उधर रह गया ते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब ही छड्ड दईए उस मर्द दे जकारियां नाल उह जंग जिते गए सन इन्हां नूं भुलेखा सी। आखिर साध संगत जिहड़े कहिंदे सन कि इन्हां कोल 125 सिंह है ना कोई ऐटोमैटिक हथियार है इन्हां नूं हत्थों हत्थी फड लैणा है अज साध सिंह जी 5 जून दा दिन चढ़िया जनरल शबेक सिंह जिहड़ा बाहर दे जिहड़ा साध सिंह जी बंगलादेश जी जित दा हीरो है जिन्हूं मान सम्मान देना सी पर साध सिंह जी उस मर्द दा कोर्ट मार्शल कर दिता गया ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਝੂਠੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਕੌਮੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਛਲਣੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭੰਗੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਸਤੰਬਰ 1740 ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ, ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋ ਕੀ ਮਾੜੀ। ਆਓ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਸ਼ੱਦਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੰਦੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ।
0: ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਅੱਤ ਮਚਾਈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ

मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी। जो भी दिखाई दे रहे है रोग दिखाई दे रहे है, रोग दे ही दर्शन होंदे ने। चल दे फिर दे मनुखां दे दर्शन नहीं, रोग दे दर्शन ने, रोगियां दे दर्शन ने। एक एक मनुख एक ऐसी तख्ती है जिस देते हजारां रोग लिखे हुए ने। पढ़न दी समर्था होवे मनुख खुद पढ़ सकदा है, वरना ये तख्ती खुद भी बोलन लग पैंदी है और खुद भी बयान करन लग। रूहे जमीन ते एक जो अपने नूं खुद पढ़ के सुनांदी है, मैं दुखी हां ए रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हर रोगां दी पंड है, दुखां दी पंड है, सिर्फ खोलन दी देर है। जरा जिया खोलिए सवाए दुखां दे होर कुछ निकलदा ही नहीं। दुख की पंडा खुलिया सुख ना निकसे कोई। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हर मनुख दुखां दी पंड है, जरा खोलिए रंचक मात्र भी सुख लभदा नहीं, दुख है दुख है। इसे तरीके दे नाल महान दार्शनिक संत जो 2500 साल पहला है भारत दी भूमि विच होया, वैसे थे नाम सिद्धार्थ सी, लेकिन बाद विच गौतम बुद्ध का कहलाया, उत्तम बुद्ध वाला, उत्तम सोचने वाला। दुनिया विच कुछ महापुरुष ऐसे होंदे ने ओ पिटी हुई लकीर दे हिस्से नहीं होंदे, उन्हां दे चलदिया ही लकीरां बनदियां ने। पिटी हुई लकीर तो मुराद अज तक जिना जिना रस्तियां तो जो सत पुरुष सत तक पहुंचे ने, उन्हां रस्तियां दा जो अनुगमन करे उन्हां ते ही चलन दी कोशिश करे, उसकी अपनी मेहनत कुछ नहीं, सिर्फ पिछे ही चले है। लेकिन दो महापुरुष जगत विच ऐसे हुए ने, एक महात्मा बुद्ध एक गुरु नानक, ये खुद चलते ने। इन्हां दी जीवन चेतना खुद रस्ता लभदी है और इन्हां दे चलन दे नाल रस्ता बनया। एक रस्ते दा नाम बोध धर्म पै गया, एक रस्ते दा नाम सिख धर्म पै गया। ये दोवें पिटी पिटाई लकीरां ते नहीं चले, दोहां ने बुलंद वांग एक गल कही है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। अगर जन्म दुख है मरण दुख है ते जन्म ते मरण दे विचकार जो हो सकदा है वो सुख किस तरह हो सकदा है। जैसे कणक दे बीज तो कणक पैदा होंदी है, चनिया दे बीज तो चने ही पैदा होंदे ने। अगर जन्म दुख है तो इस दुख दे सारा जीवन दुखी होवेगा और कुछ नहीं, और अंतिम एक बहुत वड्डी दुख दी मोर लगेगी वो है मरण। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी दा प्रमाण, हे प्रभु जन्म मरण निवार, प्रभु जन्म मरण निवार, हार परयो द्वार। कई दफा दार्शनिक चिंतक हैरान ने गुरमत नु समझण वाले महात्मा बुद्ध नु पढ़न वाले, इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, और इतने रोग ने, इतने रोग ने, मनुख जी किस तरह लेंदा है।
ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਆਸਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ,

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिनू तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उनानु नाम दिता जांदा है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंह निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल, जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया, देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस कीता अनुभव कीता जगत दुख है, जगत रोग है, जगत मिथे है, जगत ते वगदे हुए हंजू ने, जगत ते एक पीड़ा है एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहन लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है, और उस रोग दा समाधान लेके उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नु स्वस्थ करदा रहा, समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां लई वैद है, इसते कुल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नु समझना होवेगा जगत एक पीड़ा है। तो जगत तो मुराद की लिए मनुख, मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ए नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने, नहीं मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इस दी शुरुआत इंज कर देने, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा। जन्म भी पीड़ा है, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखानु, जन्म सुख है, जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्म दिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है, जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है, मौत पीड़ा है इसनु भुलाना है, मौत वेदना है

0: गोमती सायस गौ दान की जाए, हजारा गावां दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे, ए भी नदी। महाराज कहिंदे आत्म जो नरमाइल की जय आप बराबर कंचन दी जय राम नाम सर तऊ न पूजे। अस दान गज दान सेजा नारी भूम दान ऐसो दान नितो नित की जय। घोड़िया दा दान कर, गवां दा दान कर, इस्त्री दा दान कर, पर सच्चे पातशाह कहिंदे सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निरैर काल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद।
2: गुरु रूप सत्संग जीओ पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मनुख एक ऐसा जन्म है, सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नो जन्म देंदा है। मनुख दे अंदरों ही समाज का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही राजनीति का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही धर्म का जन्म होया है। समाजिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, राजनैतिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया है, फिर मनुख ने समाज नो जन्म देता है, मनुख ने राजनीति नो जन्म देता है, मनुख ने धर्म नो जन्म देता है। राजनीति ते समाज नो इस वक्त ना ली क्योंकि आपां धार्मिक मंदिर दे च बैठे हैं, ते महान धर्म दे सागर धर्म दे केंद्र धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म दी करांगे। जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च इक कद नहीं, हजारां च सैकड़ियां च इक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हो गुरमुख होए पछान, कोटन में नानक को नारायण जय जी। गुरु तेग बहादुर करोड़ां दस कोई एक नारायण जिस दे चेते दे चे, नारायण जिदी समझ दे चे। गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है ना। गुरु दी अजमत दा पता ना, गुरु दी महानता दा पता ना, गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा, जो मेरी समझ दे च नहीं होवेगा। परमात्मा है, परमात्मा जर्रे जर्रे च है, रोम रोमे च है, होवे पिया, जो मेरी समझ दे च नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी सिमरती दे च नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम दे च परमात्मा, मेरी सिमरती दे च नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरशां ने आख्या है याद करो, चेते करो। संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते है मैं दोहरावां शब्दां नूं, असीं ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं, भुल गए। भुलिया क्यों? समझ दे च नहीं। कहिंदे ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहने दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु दी जिंदगी दसदी है इनू मां बहन दी समझ नहीं, इनू परिवार दी समझ नहीं, मनुख दी जिंदगी दसदी इनू निरंकार दी समझ नहीं, नहीं इहदा व्यवहार दसदा है, इहदी तर्ज़े जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा दी समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जन्म ते हो गए ते हुण मैं इह वी अर्ज़ करां, जन्म बच्चे दी तरह हुंदा है, कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह दे महान रूहां दा जन्म भी होया जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां बुढ़िया दी तरह जन्म होया। चीन दे च कहिंदे ने लाओत्से जिहड़ा संत होया कहिंदे ने बुढ़िया दी तरह पैदा होया, ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी, जन्म तो दूरदृष्ट सी। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण, ए गुरु अर्जन देव जी तुसी ते जमदे ही ब्रह्म गए ने, हे गुरु अर्जन देव जी महाराज थोड़े शरीर का जन्म होया, शरीर के नाल नाल धर्म का जन्म होया, ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण। कहने ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन, गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है चढ़न की कोशिश पे करते, उपर तखत से चढ़न की कोशिश पे करते, बजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ये गुरु नानक का तखत है, ये तीजे गुरु नानक का सिंघासन है, इसते बैठने की कोशिश ना करना, इसते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे बालक गुरु अर्जन देव जी इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न की कोशिश ना करनी, यह गुरु नानक का सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिदा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लेके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता, आखिया बहुता बाणी का बहुता, इते बाणी दा जहाज है, जे ए नहीं सिंघासन ते बैठेगा ते होर कौन बैठेगा, इते धुर दरगाहों बैठे होया है, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, इते प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनिया नू परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी, इते बहुत है, इते जहाज है, इते आसरे पता नहीं कितने पार होणगे, ए नहीं बैठेगा ते कौन बैठेगा। जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ा च एक अद कदी कदी, जन्म सारिया दे बच्चे दी तरह होंदा, शरीरक तौर ते भी बच्चे, दिमागी तौर ते भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार दे इतिहास दे कोई बुढ़िया दी तरह पैदा होंदा, चीन दे चे कथा है भाई लाद से बुढ़िया दी तरह पैदा होया, भाव जन्म तो ज्ञानी हो। कबीर बारे कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नूं कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, ब्रह्मे नूं कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, नहीं जन्म तो कमल जैसे से डुबे नहीं गर्क नहीं होए, समझ से जैसे पानी दे कमल डुबदा नहीं, जिहड़े मनुख संसार विच डुबन ना पदार्थां विच डुबन ना वो कमल दी तरह होंदे ते डुबे होए ने सहजे सहजे फिर तैरना ते निर्लेप होना सिखदे ने, पर कोई जन्म तो भी निर्लेप होंदा है, उन्हां नूं कहिंदे ने इहनां दा जन्म ते कमल तो होया, भाव कमल जैसे ने, कमल डुबदा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने हम देखा तैं डुबे आए, पहले पातशाह जी दा वाद महाराज कहिंदे मैं ते देखदा डुबे पए, डुबे पए सुते सिद्ध गल आ गई, तो मैं अर्ज करा पानी विच कुत्ते तैरदे ने, गौआं भी तैरदे ने, मज्जां भी तैरदे ने, पानी वेच चीते भी तैर के लंघ जांदे ने, मैं केरला विच देख के दंग होया सी। बहुत पुरानी गल, 60 फुट डूंगा पानी हाथी नहावे गया कि नहा के बाहर निकला है। हाथी तैर रहे, पहाड़ वर्गा शरीर तैर रहे, हाथी तैर रहे ने, गौआं तैर दियां ने, घोड़े तैर रहे ने, मझां तैर दियां ने, कुत्ते तैर रहे ने, शेर तैर रहे ने, चीते तैर रहे ने, मनुख डुबदे ने, बंदा डुबदा, सिर्फ मनुख डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? मझां ते तैर दियां ने, घोड़े ते तैर दे, हाथी ते तैर दे ने, गौआं ते तैर दियां ने, कुत्ते भी तैर दे ने, बंदा डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? नहीं, मनुख भी जिंदा ही डुबदा है, मुर्दे ते तैर दे, तैर दे, मुर्दा ते तैर दे। यूपी दे अंदर मध्य भारत दे चे सनातन मत दे कोई हिंदू सन अगर चलाना कर जाता है, देही छड़ जाता है, उन्हों जल प्रवाह कर दें, दाह संस्कार नहीं कर दे, जल प्रवाह कर दें। पर जब जल प्रवाह कर दें तो मन मन दो दो मन दे नाल पत्थर बनते हैं। क्यों? लाश तैरन लग पैंदी। हालांकि लाश जिंदा मनुख नालों भारी हो जाती है, वजन वध जाता है, लेकिन तैरदी हैरानगी है। जिंदा डुबदे ने, मुर्दे तैरदे। पानी दा मनुख नाल भी वैर है। अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए। मुर्दा ते नहीं डुबदा, जीव दा मनुख क्यों डुबदा है? ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, ता डुबदा है। लोग इसका तवाजन दामा डोल कर देता है, सीमा तो वधिया होया अहंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देता है, सीमा तो वधी हुई वासना इसका संतुलन दामा डोल कर दे, डुब जाता है। हम देख खाते डुबे आया, इधर डुब गया। डुबे की पहचान की होगी? उदा नितनेम डुब गया होगा, नहीं करता होगा। रहत वैद डुब गई होगी, अमृत वेला डुब गया होगा, गुरु भक्ति डुब गई होगी, सील संयम डुब गया होगा, दया विशालता सम दृष्टि डुबी हुई होगी। हम देखते डुबे, महाराज कहते मैं तो देखना डुबे हुए, दुनिया डुबी हुई है, गर्क हुई है। डुबे की पहचान की है? उदे कोल नितनेम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, सील संजम नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होंगे, डुबे होगा, गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई इक्कद मनुख अपना तवाजन, अपना बैलेंस ठीक रखता है, डुबदा नहीं, उसे नु असी कहने निर्लेप है, कमल की तरह। पानी वधदा है, कमल होर उपर उठता है। धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया। प्रभता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं कि कोई प्रभता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे। हम देखते हैं डुबे। महाराज कहिंदे मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई। धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा देखड़ा है। सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दे किरणा दे रहा, परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे रहा। गुणा तो पता चलदा है, इत्थे जानना है। सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर दे च चानना है, पर चानना ते सूरज दा है मेरा ते। अगर हिरदे दे च गुण आ जान, गुण परमात्मा दे ठीक है। गुण रोशनी ने, औगुण अंधेरा है। जितने अवगुण होंगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होंगे उतने ही उदी जिंदगी दे चानना होवेगा, प्रकाश होवेगा और जीवन सही मार्ग पे चल रहे होवेगा। तो मैं फिर दोहरावा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, तो चल दी की है सुरत चल दी है, तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गए, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है, असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है, शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु गुरु की हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे आउणगे जिन्हां गुरु की हजूरी नसीब होगी। कलगीधर पिता दे रसना तो ये बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर, शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर, जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी, ध्यान उठे नहीं सी, सुरत शब्द बेच नहीं सी, हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हों का ध्यान उठे सी, गैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना। सुरत अगर शब्द की तरफ चल पाई है तो मैं ये भी तरह दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ में आवे। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोत ही शब्द तो बने हैं सुरत, भई ये ते स्रोत है, ये ते सुरत दे च है, सुन रहे हैं। एक सैकंड दे तीन घटनावां घटदियां ने एक ही समय, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, इते स्रोता है, सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घटदे ने। जिस वक्त मनुख सुनदा है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड दे घटदी, एक सैकंड दे घटदी। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुने, इधर मन नु समझ आ गई, इधर मन नु समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण, ऐ ज्योत दे ज्योत हो गए, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी इक छिन विच है, निर्माण कीर्तन गावो कर तेका निमक सिमरत जित छूट है। निमक, निमक एक सैकंड है। एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन एक निमक, इन अत कथने ना समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा हो, गुप अंधेरा हो, उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते 50 साल लगन गए, नहीं एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई पे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा, इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगन गए, नहीं एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर ना, ते एक दम ही आज है। बाबा फरीद कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणिया मनो मचिंदरिया, मैं पानी हुण पीना प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी, मैं भोजन हुण छका हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है, मैं नाम हुण जपां फल अगले जन्म विच मिलेगा, साल 2 साल बाद मिलेगा, इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐਕਰ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਤ ਛੇ ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਟੇਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕੱਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਾਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰਾ ਉਤਾਰੀ, ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਤੜਪਦਾ ਰਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਤਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮਨੋ ਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਪੈਗਾ। ਜੈਸੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਪੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਣਾ ਪੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪੁੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ। ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਖ ਨੇ, ਸਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੁਆ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, बच्चा बोलन लग पे। जिस दिन बच्चा कदम पुटे, बच्चे ने कदम पुटे, चलन लग पे। चलो एक कदम ही सही, कदम तो पुटे, खड़ा ते होए। कोई 30-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द दी तरफ, यकीन जानो गुरु नु भी चिंता हो जाती है। गल की है, इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे, 50 साल हो गया गुरुद्वारे आउंदिया, अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे, गुरु नु भी चिंता हो जाती है, बोलना ही नहीं आया। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही, इन्हू बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं। 50 साल का हो गया बोलता नहीं, फिर ये 30-35 साल हो गए ने, इन्हू चलता ही नहीं। चलना ते सुरत ने, जपना ते रसना ने, रसना नाम जपो तब मतिए, इन बिद अमृत पाओ, जपना रसना ना लो। और जपण दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है, गावीए सुनिए मन रखिए, जबान गायन करे ते मन सुने, मन स्रोता बने जबान वक्ता बने। अगर जबान वक्ता बन के मन स्रोता बन गया, ये पुरुष पहुंच गए। जबान वक्ता ते बनी है, मन स्रोता नहीं बने, ये चलते पे पहुंचे कोई। जबान वक्ता ही नहीं बने, जपदा ही नहीं। ते उस बच्चे की तरह होया, 4-5 साल का हो गया, मुंह बोल नहीं निकलते पे, मां बाप नो चिंता, गल की है बोलता नहीं। डिगना की है ते चलना की है, सत्संग विच आया चल पे है, को संगत विच बैठा है डिग गया, सच बोले है चल पे है, झूठ बोल रहे है डिग पे है। दान कीता है चल पे है, बेईमानी कर रहे है डिग पे है। अमृत दी प्यास पैदा हुई है चल पे है, शराब दी तलब जाग पई है डिग पे है। जिंदगी भर ये चलना डिगना चलना डिगना यही होता है। हाथ दे गुटका है चल पे है, पर गंदे गीत अला पर है डिग पे है। तुसी देख सकते चल देने डिग देने चल दे, सारी जिंदगी चल पेने डिग पेने, कदम अगे तरफ उड़दे डिगदे पिछे दी तरफ, फिर उत्थे ही आ जाने ने जिथों चले। और सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे एक कदम पिछे पुटे, किथे पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टूटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। दावे नाल मैं कह सकदा 40-40 साल तो जड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, 40 साल पहले क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने, 40 साल पहले लोभी सन, अज भी लोभी ने, 40 साल पहले झूठे सन, अज भी झूठे ने, और 40 साल पहले वासना दे भरे हुए सन, अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने, मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने टूटे भी ने, 40 साल पहले हंकारी सन, अज भी हंकारी, खेड़ते कुछ भी ना, चले ने चल चल के थके ने टूटे ने, पहुंचे किधरे भी किधरे भी। हे प्रभु मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर तू मेरी बां पकड़, खेड़ बने। दास गोविंद फतेह सतगुर की बाहां दे मोहे निस्तारो, गुरु गोविंद सिंह जी ने, हे प्रभु अपनी बाह दे अपनी बाह पकड़ा ते डिगण तो बची। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन, मनुख कोल जिहड़े कन ने ये पुत्र नूं सुन सकदे ने, मित्र नूं सुन सकदे ने, पत्नी नूं सुन सकदे ने, पति नूं सुन सकदे ने, भरा नूं सुन सकदे ने, मित्रां नूं सुन सकदे ने, गुरु नूं नहीं सुनदे। ये हकीकत है महाराज, मेरे कोल ओ कन नहीं सतगुर कहिंदे जो तैनूं सुन सकदा, मेरे कोलो जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका, मेरे बोल उत्तरां तक पहुंचते ने, परिवार तक पहुंचते ने, मित्रां तक पहुंच जाते ने, पड़ोसियां तक पहुंच जाते ने, ये प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच। मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचा। पहुंच दिए गल रब तक, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। जाका कहा दरगे चले, महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चल रहा है, परमात्मा सुन रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवें नहीं बोलना, दे कन्न सुनो अरदास जी, मैं तेरे कन्न विच गल करनी है, मैं थोड़ी करनी है, तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलते ने प्रभु सुनदा, क्यों उन्हां दे बोल प्रभु तक पहुंचते हैं। दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है, जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरे कोल ओ अखां भी कोई नहीं जो तेनू वेख सकदियां ने, जो परमात्मा नू वेख रहियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने, ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ। साहिब कहिंदे ओह सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। गुरु ग्रंथ साहब दे पहले टीकाकार भाई गुरदास ने आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी रिच जो आया गालबन 150 शब्दों के अर्थ भाई गुरदास जी ने आप किए ने। जिहड़े जिहड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी ज्ञानी भुलेखा खा सकते सन, लोकी धोखा खा सकते सन, भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मन, इस श्लोक नूं भी खोलदे ने। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता मैत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलदे हां पवन करके बोलदे हां, देही माटी बोले पवन। पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई होंदी पानी के शरीर च है, मिट्टी का ढांचा भी पिया, पवन नहीं रह गई तो बोलना कोई नहीं, बोलना ही बोलना ते पवन करके। देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए, बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टूटते ने। कुछ ऐसा बोल है, बोल होंदा है, ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं मुद्दतों की मित्रता दुश्मनी च बदल जाती। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नू तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे, पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सकून भी दे सकता है। खेड ते सारी बोलां दी, मनुखी दुनिया की सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है, ये भी मैरस कर दें। सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने, मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूढ़े होवन कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भई साडी बोलचाल ही कोई नहीं। संबंध जुड़दे ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना वाहेगुरु वाहेगुरु, ताई रसना जत सदी अंदर श्वास चलन पवन है। भावें पानी पिता है, भावें धरती मां है, पर पवन ते गुरु है, संबंध जोड़दा है परमात्मा। ऐसा कुछ बोलना है मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार, कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़दा है, परिवार नाल संबंध जुड़दा है। जिहड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़दे ने, संसार नाल संबंध जोड़दे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने शब्द, ते जिहड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़दे ने उन्हां नूं कहिंदे ने गुर शब्द। रोशनी नाल भरे शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप विच मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलना तो है ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद है वो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमयी है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सयाण है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस दें। हथां तो कुछ नहीं पता चलता, पैरां तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलां तो पता चलता है। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च अहंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लग्या मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास कोल ले। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दे, शब्दां नूं खोल दे। इत्थे आखो शरीर दी गल नहीं महाराज, कहिंदे ने अखां कोई नहीं, कन्न कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन्न भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इत्थे सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहिंदे ने देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिये दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका मेरे को अखां कोई नहीं, ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास, देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई। कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निद गुण सुनिए सुनाई। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुचा सका जबानी कोई नहीं, पर तेरे बोल मैं सुन सका मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरदास, कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब भाई गुरदास, मन में गुरमत गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करेगा, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, ते जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनने वाली, जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं, गुरु कहिंदा ठीक नहीं है, ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, मत्था टेकन का मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इतने रखना, गल करता मैं अपना विचार के मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पाया, सिवाय विपतावान तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पाया। और सही है, ऐ गुरु मैं अपने विचार इतने रखना, तू अपने विचार मैनू दे। और गुरु कहिंदा भी है, गुरु की मत तो ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहिंदे ने मनुख नू अपने शरीर नाल धन संपदा नाल परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोहे मनुख कह भी देंदा है, इन्हें मेरे विचारां नू सट मारी। जिसम नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे, विचारां नूं सट लग गई बर्दाश्त नहीं। इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया, इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मैनूं बड़ा दुखी किया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਮਤਾ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਮਤਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਜਦ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸਤਨਾ ਕਾ ਮਤ ਹੀਣ, ਅਸਨਾ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸੀਰਤੇ ਪੈਗੰਬਰੀ, ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ। ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਜਮ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਇਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵਕਤ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਗਿਆੜ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖੇ, ਇਹ ਭੇਡੋ ਇਹ ਬੱਕਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਸਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਚ, ਪੈਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਤਾ ਹੀ। ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੈਵਲ ਆਈਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁਲਹੀਨ ਦੀਨ, ਕੈਸੇ ਬਹੁ ਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਈਏ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਆਇਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੱਥਰ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਪੱਥਰ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਉਮੀਦ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਔਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤਣੀ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆਂਦੀ। جنہیں محمد صاحب تے سب تو پہلے شردا لین دی وہ خدیجہ سی انہاں دی پتنی سی جس نے سب تو پہلے گرو نانک تے شردا لین دی وہ بے بے نانکی سی اتھوں سکھی چلی خدیجہ تو اسلام چلیا جے کدھر اس دی پتنی انکار کر دیں دی کہ اسلام نہیں بدلنا سی یہ بھی میں عرض کر دیا انہیں قبول کر لیا محمد اے بول تھوڑے نہیں تے خدا دے لگ دے تے محمد صاحب بھی کہنے لگے خدیجہ تو ٹھیک جانے میں تے چپ کر گیا بالکل چپ کر گیا مینوں تے ہن بولنا ہی نہیں آتا پتہ نہیں خدا کی بولنا گرو نانک کہندے نے ہاں آکو بولنا جاندا ہوں کہا سب حکم آؤ جی مینوں بولنا نہیں آتا میں نہیں بولنا پتہ نہیں رب کی بول پتہ نہیں پرماتما کی بول رہا جیسے میں آوے قسم کی وانی کیسڑا کریں گیان وے لاڑا یہ شردا سب تو پہلے بےبے نانکی دی سی سکھی اتھوں چلی گئی خیر بابا مسجد دے پہنچ گئے قطار دے کھڑے ہو گئے امام نے رباط پڑھنی شروع کی تھی سارے نے سجدہ کیتا ہے گرو نانک کھڑے رہے جنم ساکھی دے بڑے وستار نال ایک گاتھا لکھی اور وک وک ڈنگ نال لکھی سلطان پور دے نواب نے اکھاں کھول کے دیکھ لیا کہ بابے نے سجدہ نہیں کیا چکے نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے نماز پڑھن تو بعد سماپتی تو بعد نواب کہن لگا سب گلیں ہی گلیں نے رام ایک کو ہے اللہ ایک کو ہے تسی کیا سی ساڈے نال نماز پڑھو گے تسی تے نہیں پڑھے گی مہاراج کہنے لگے ساڈا وعدہ سی تیرے نال نماز پڑھنی سی تیرے نال مل کے گھوڑے نہیں خریدنے سن تو تے کابل دے گھوڑے پیا خرید رہے اپاں گھوڑے نہیں خریدنے اپاں تے نماز پڑھنی سی ساڈا وعدہ اے سی تیرے نال نماز پڑھنی تیرے نال گھوڑے نہیں خریدنے تو گھوڑے خریدنا پیا سی کہ نماز پیا پڑھتا سی حیران ہو گیا نواب نماز پڑھتا گھوڑے پیا خریدتا سی کوئی مندر دے پوجا پاٹھ کر دیں اپنے گھوڑے خریدا کوئی گردوارے بیٹھا کتھا کیرتن سن دیں پاٹھ کر دیں اپنے اپنے گھوڑے لوگ خرید دیں کون گرو نال جڑتا سب اپنے اپنے گھوڑے خرید رہے اپنی اپنی گلوں چ الجھے ہوئے ہوتے اپنے اپنے جھمیلیاں پھسے پے ہوتے کدی کدائی کوئی پرش پربھو کی استتی دے جڑے ہوں اتنے پرشن پیدا ہوتا ہے وہ ہاتھ کہڑے نے جڑے سیوا کرتا وہ پیر کہڑے نے جڑے چل پہ وہ زبان کہڑی وہ اکھاں کہڑیاں نے گرو نانک نے انہوں کا خلاصہ کیتا ہے بھے کے چرن منک دے اندر سماج دا ڈر ہے قانون دا ڈر ہے لیکن پرماتما دا ڈر نہیں صاحب کہنے ٹنڈا ہے دے کول ہاتھی کوئی نہیں پرماتما دا تے ڈر ہی نہیں سماج تو ڈردا ہے قانون تو ڈردا ہے رب دا تے کوئی ڈر ہی نہیں پرماتما دا واقعی ڈر نہیں دیکھو گولک نو بھی تالے لائے نا تین تین چار چار لائے یہ مطلب چوری دے اتنے بھی ڈر ہے کئی دفعہ ایسا دیکھے اگر ٹکٹاں تے جوڑے نہ رکھو تو پیری ننگی جانا پہنے گا جوتیاں بھی نہیں لگ گئی کوئی رب دا ڈر تھوڑی قانون تو ڈردا ہے پولیس تے نہیں دیکھ رہی سماج تو ڈردا ہے دنیا تے نہیں دیکھ رہی پرماتما تو نہیں ڈردا جو ہر جگہ دیکھتا ہے بےکھت سنت سدا ہے سنگے میں مورک جانے ہاں دوری سدا ویکدا بھے کے چرن کر بھاؤ کے پیر بھاونا دے بنا بھاونا شبد دو اوستھاواں تو بنتا ہے پریم تو تے بھروسے تو جس تے بھروسہ ہے اس نال پریم ہے جس نال پریم ہے اس تے بھروسہ ہے کئی دفعہ بچے نال پریم تے بڑا ہے پر بچے تے بھروسہ نہیں ہوتی ہر گل تے بھروسہ سی توڑی کر دے بچہ بچہ بھروسہ نہیں ہوتا کئی دفعہ کسی تے ساڈا بھروسہ تے پکا ہے بھائی بندہ قابل اعتبار ہے بھروسے ہی ہو گئے اس تے بھروسہ کیتا جا سکتا ہے پر وہ کوئی پریم کا سمبند ہی نہیں صرف بھروسے ہی ہو گئے بھروسہ تے پریم جب دونوں کٹھے ہونے نے انہوں کہتے ہیں بھاونا کر بھاؤ کے हाथ बना भावना दे, पैर बना पै दे, परमात्मा का भय होवे पैर गलत पासे नहीं जाने, परमात्मा की भावना होवे हाथ गलत करनगे भी नहीं। बह के चरण कर भाव के लोयण सुरत करे, अखां बना ज्ञान दिया समझ दिया, सुरत दे ते अर्थ समझ, समझ दिया अखां बना लोयण सुरत करे। नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा, इस तरह मिलावा। इकबाल कहिंदे ने दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इलम में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। ठीक है ज्ञान बार दा अक्षय ज्ञान, ओदे च भी कोई गल होवेगी पर रस तो ही नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान ते अनुभव ही होता है जो अंदरों जन्मे ते अंदर दी दुनिया नु बदल दे। अनुभव प्रकाश लोयण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा। जितने चिर तक समझ दी अखा नहीं ने गुस्ताखी माफ नेत्र ही ने, भावना नहीं है ये टुंडा, पै नहीं है ये लंगड़ा, अमृत वेले उठ के जपदा नहीं है ये तो गूंगा, ये तो गूंगा। परमात्मा दी बाणी गुरु दे बोल सुन लगे अंदर उत्साह नहीं पैदा होता है, तो बहरा है एक ते सुनता है ते बहरा है। महाराज कहते ने रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए, पहला पातशाह वाक सतगुरु नानक देव जी महाराज का वाक, रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए। जो लंगड़ा है टुंडा है अंधा है बहरा है गुंगा है इन्हों परमात्मा कितों नसे। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन नहीं, बच्चे कुल अंग नहीं है, हाथ हैं कुछ नहीं कर सकता, जबान है नहीं बोल सकता, सहजे सहजे इसनों भोजन मिलता है, दूध मिलता है, खुराक मिलती है, एक दिन इसके हथाच ताकत आँगी कुछ करन लगता है, एक दिन इसके पैरों च बल आ जाता है चलन लग पैंदा है, एक दिन कुवत गोयाई मिल जाती है बोलन लग पैंदा है। शरीर दे ये सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन दी शक्ति नाल, विकास सारा भोजन ते खड़ा है। रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के, हर अमृत वेले वत्ते का भेजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया जपदिया एक दिन वाहेगुरु दिखाई देन लग पैंदा है, एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देन लग पैंदा है, एक दिन उसका दामन हथां दे आ जाता है, एक दिन ऐसा महसूस होता सी कि परमात्मा की गोद च बैठे हैं। ये सारी तौफीक मिलती है भजन नाल, जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन, भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा, मनुख का शरीर मर जाएगा, पर भजन रोज रोज ना हो वो अखा नहीं मिलनगियां जो परमात्मा नु वेख सकते हैं, वो कन भी नहीं मिलनगे जो सुन सकते हैं, वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस माण सकती है। ये भी मैं अर्ज कर रहा हूं, भोजन की बुरकी मुंह ते रख रहे हैं स्वाद आ गया, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया रस नहीं आया, क्यों अजे जबान विचों तौफीक नहीं है, वरना वाहेगुरु आखण का भी अपना रस है, जिन्हों वाहेगुरु आखदिया रस आवे साहब कहने परमात्मा की रसना ते वसे है। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, वाहेगुरु तो यदि जबान ते है, क्यों ये वाहेगुरु आखदा है रस नाल भर जाता है, ये बाणी जपद रस नाल भर जाता है, बाणी तो यदि रसना ते वस गई, नाम तो इसकी रसना ते वस गया। जिन्ने चिर तक वाहेगुरु वाहेगुरु आखदिया रस ना आवे अजे वाहेगुरु रसना ते नहीं वसया, जितने चिर तक रसना ते नहीं वसया अखा नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा, परमात्मा ने दिखाई देगा संसार दिखाई देगा, कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा। पहले गल रस दी, भोजन पहले जवान दा रस बनता है, खून बाद विच बनता है, मांस बाद विच बनता है, हड्डियां दी ताकत बाद विच बनता है, इंद्रियां दी शक्ति बाद विच बनता है। रस पहले भोजन दी बुरकी दा रस आ गया, स्वाद ते पहले आ गया, हुण सहजे सहजे ये बुरकी

0: समझना अनुभव प्रकाश होते लंबी गल है, अजिते आखदियां रस भी नहीं है। प्रभु जी बसे साध की रसना, जैसे रस आन लग पैंदा है रसना ते प्रभु वस जांदा है ते रसना विच बरकतां आ जांदियां, बोलां विच बरकतां आ जांदियां, एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां, जपदियां जपदियां एक दिन कदमां विच क्रांति आ जांदी है। ये सब कुछ जपदियां जपदियां हुंदा है। महाराज कहंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकत, जे ओ कंचन नो हथ लावे खेउ सेती रल गया, सोने नो हथ पांदा मिट्टी हो जांदा, बणदे होए कम नो हथ पांदा डै डेरी हो जांदा। पर ऐसे भी हथ ने मिट्टी नो छूंदे ने सोना, बिगड़े होए कम नो हथ पांदे ने सिरे चढ़दा है। महाराज कहंदे ने हथां च बरकत, पैरां दे सत्य है। ये तां हुंदा है जद पहले बोलां च बरकत आ जाए, प्रभु दा नाम रसना ते टिक जाए, साहिब रहमत करन बख्शिश करन ए सौगात साडी झोली च पवे ताकि इस परम आनंद नूं असीं माण सकीए। इतनियां विचारां प्रवान बोल छुक दी शमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: भाई कवि महाकवि भाई संतोख सिंह जी जो इतिहास लिख रहे थे ना, तो कहते मैं कलकत्ते ठहरिया होया सी। कलकत्ते श्री गुरु नानक साहब महाराज जी का स्थान है और पातशाह के दो तीन स्थान ने उस जगह उत्ते, संगत उत्थे जाती रहती है। चंद्रकोट 150 किलोमीटर की विथ उत्ते वह भी स्थान है जिथे भूमिए चोर नूं उपदेश दिता, वह भी गुरु नानक साहब दे उत्ते। कहते मैं कलकत्ते ठहरिया होया सी, मैं उतों 150 किलोमीटर चंद्रकोट का इतिहास लिखना सी। जिथे मैं ठहरिया सी छोटा जिहा कस्बा सी, सवेरे मैं वधिया कोट पेंट पा के दस्तार सजा के घरों निकलदा, एकांत जगह समुंदर के कंढे बह के इतिहास दीयां बनगियां पंक्तियां लिखदा। रस्ते विच इक छोटा जिहा चाह का खोखा आउंदा, उतों मैं एक पैसा दे के चाह पीना, रोज की रूटीन बन गई। कहने एक दिन उस चाह के खोखे उत्ते एक भिखारी आ गया, उन्हें आके भाई संतोख सिंह ने मोहरे हथ करके कहा, भाई मैं भी चाह पीनी है, कोई पैसा दान कर। कहते मेरे को हुण राजे दियां दित्तियां सारियां सहूलतां सी, जदों उन्हें दान ही मंग लिया मैं चार पैसे कढ के उहदे हथ उत्ते चार आने रख दिते, रुपये के 16 आनियां चों चार आने। उन्हें एक आने का चाह का कप पीता, दो मठियां खाधियां, तीन आने भिखारी ने वह बगा के मारे। मेरे मन च बड़ा आया वे पैसा लिया भी इन्हें सुट दिता, इनू कल दोपहरे सवेरे अज भी भुख लगनी सी, इन्हें पैसे सामभ के नहीं रखे। इस तो पहला मैं भिखारी नूं पुछा, भिखारी अगां तुर गया। अगले दिन मैं फिर आके उस बेंच उत्ते बह गया, चाह का कप पी रहा सी, इन्ने नूं फिर उहो भिखारी आ गया। उन्हें आके हथ मोहरे करके कहा, मैं भी चाह पीनी है, पैसे दे। मैं जेब विचों कोट पेंट चों अठ आने कढ के उहदे हथ ते रखे, अठ आने समझदे हो अद्धा रुपया, अजकल बच्चों नूं दसना पैणा वी अठ आने की है, अद्धा रुपया। जदों उहदी तली ते धरिया मेरा ध्यान उहदे वल सी, उहने एक आने दा खाधा पीता, चाह पीती, मठियां खाधियां, बचदे होए सत आने उह बगा के मारे, उह तुर गया। कहिंदे मेरे मन विच बड़ा रोस आया, उह काली नाल निकल गया, पर मेरे मन विच सी इह बंदे नूं मैं पुछणा जरूर है। मैनू उस दिन लिखना भुल गया, मैनू उस दिन नींद आनी भुल गई, मैनू उस दिन भुख प्यास भुल गई, भिखारी बंदा पैसे क्यों सुट रहा। तीजे दिन मैं तैयार बैठा सी, चाह का कप परां धर दिता, उहदी तली उत्ते 16 आने पूरा रुपया रखिया, अज तां सांभ लेगा। उहने 16 आनियां चों एक आने का चाह कप पीता, नाल दो मठियां खाधियां, बचदे 15 आने सुट्टन लगा। जदों सुट्टे कहिंदे मैं पहले तैयार सी, जाके भिखारी की बांह फड़ ली, ओए गल सुन, तीन दिन हो गए तेनू पैसे सुट दें, परसों पैसे लए तो तू चौं तो तीन आने सुट दते, कल पैसे लए अठां चों तू सत आने सुट दते, अज पैसे लए 16 चों 15 आने सुट दते। तेनू सवेरे दुपहरे राती भुख लगनी सी, कल भी भुख लगनी सी, पैसे सामभ के रखदा ते तू पैसे सुट क्यों दिना, तेनू मंगना नहीं सी पैना, पैसे रोज क्यों सुट दिना, पैसे सामभ के रखने सी। जिहड़ी गल ओह भिखारी ने कही, कवि संतोख सिंह लिख दे, कहिंदे मैं पेंट कोट पाया होया, महंगे बूट पाए ने, सिर ते पग बन्नी है, पर जिहड़ी

0: voice of the You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलता, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है। जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है वो ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

निरंकार है नहीं लगे नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दिया ये को रहे।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुख तो धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: चौक मोहल्ला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खास पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: सचकाल पूर्व कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जे को तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैविच खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान पक्ति जे रपे कूड़े सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हो शिकदार काम ने इज्जत पूछिए बह बह करे विचार अंधी रजत ज्ञान होनी पाहे प्रेमरदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे कुके वदा गवे जो दका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है छड़ बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: महला का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: कुंभे बड़ा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बड़ा मन रहे
1: और बिन ज्ञान ना होए पड़ी पड़ा हो रखन का साधन मारिए

0: तुम्हा पुरा तपे का सात गेर तुम्हा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुम्हा हो
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में आशय सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी।

और सतगुरु बठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहता।

ओडिशा महोदय कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी तृत हैं, अमृतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता अमृत हैं, नर नायक हैं, खलकायक हैं, विशंभर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पावपंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्मवास हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रियात छंद

बीज बीजे नमो राज संताम शं शांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नमो अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो यास यासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रपंगी त्रकाले अनंगी अकामे

लेखे भुजंग प्रियात शानदार नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नर काम विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयंभव सुभुंग सर्वदा सर्वजुगते सर्व

सुजंभव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग बेपुते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तप साध सोईए श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरे कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा दिख संत समूह।

एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग नूप तंग सुरंग सवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पे तो कहा पे पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसते है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पर श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिदारे तीर्थ नहन दया दम दान सुसंजम नेम।

कहूँ लखिवार बाची दिशा मैं कहूँ पिशा को शीश निभायो कहु पुतान को पूजतो कहु पुतान को पूजता है बस को मृतान को पूजन पायो कूर क्रिया और देव सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया और देव सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दर्शा पूरन हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो आप हाथ दे मुहे बचाव हो सुखी बस है मोर परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर शानिज कर दे करिया सब वैरन को आसंगरिया पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें ख्याल कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे बरिया है मरण काल का त्रास निवरिया हो जो सदा हमारे पश्चा श्री अस्तु जो करी हो रक्षा राख ले मैं रख नहारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की ओ वेद राज ब्रह्मा जू थी ओ जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो याद अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को मारी सकल प्रजा जने आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पल मद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछानत चींटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आपे अपनी बूझ उचारै तुम सब ही तेरा तंद्रालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार आपे अपनी बूझ उचार है तुम सब ही तेरा तंद्रालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकारा प्रजा तर तब दे अपारा जब या कर करत हो कब हूं तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आपे अपनी बूझ उचार है तुम सब ही तेरा तंद्रालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार

ना कीचै जित अंत पछोताइय सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया कने तेरा अपना आप तू जान है।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तो दो पाए एक वेख परसन आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनों आप तुठा तिने अमृत गुर ते पाया भगतां।

काहे नानक एवट दाता सो क्यों मनो विसारिया। जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करत खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहा है हर वसे मन आए।

ना पाए, हर रस पाए पल्लै, पिए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए, कहे नानक होर आन रस सब विसरे, जां हर वसै मन आए।

अवर न सूझै दूजी ठाहर, हार परयो तो द्वारी, लेखा छोड अलेखे छूट है, हम निर्गुण लेहो उबारी, साध बख्शिंद।

एजियो बते जन परम्यात सतगुरु सब सुनाया, सतगुरु जी वरदाता को ने सब सुनियो लोक सबाया, सतगुरु ने सत्ता जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सत बुझाया, जिन सच

अन्ना खाया सद गवाया बुद्ध पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे एंस कहरे मोन मगूता क्यों जागे गुरु बिन सुता पग उपताना अपना किया कमाना अलमल खाई शिरशाही पाई मूर्खन दे पत गवाई विन नावे किस थाई ना पाई रह माड़ी मड़ी वसानी अंध ना जाने प्रिपस्तानी सत गुरु भेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नदर करे सो पाया संदेश तेने केवल हो मैं शब्द जलाए।

तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया एक बचन पर समय अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। आप कहने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़ क्यों मैं चल नहीं सकदा क्यों नहीं चल सकदे हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी करने का कर सकता एक कदम चलेगा दो कदम चलेगा तीसरे ते डिगेगा लाजमी डिगेगा लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है बच्चे नु चलना आ गया प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे जद किसे धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा चलो एक कदम ही सही चलिया ते है एक कदम चल चलना एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है बड़ी वड्डी बख्शिश है भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल सत गुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है तू एक कदम चलते सही वाट लखां को दी है चिंता न कर कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई चलन दी जांच आ गई ये चल पे जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना मां नू चिंता हो जाती है पिता नू पीड़ा हो जाती है ले जांदे डॉक्टर कोलों हो गया तीन साल दा हो गया चार साल दा पैर नहीं पुटदा तीन चार वरियां दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया कहंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलता है मम्मा अखर पहले निकलता है मां मां ये पहला करण लग पैंदा है मां शुरुआत है और अखीर दिच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा जे बच्चा रह गया है बुजुर्ग नहीं होया मां कहना आया है वाहेगुरु कहना नहीं आया जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका ना ते निकल आया एदी जबान चो पावे मां ने नहीं आखिया मैं मां तेरी लेकिन निकलिया प्रकृति इस दे मुंह कढवांदी है चाहे किसी दी भाषा इंग्लिश होवे परशियन होवे अरबियन होवे चाहे कोई हिंदी बोलदा है सिंधी बोलदा है पंजाबी बोलदा है दुनिया दे तमाम बच्चियां दी जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट होंदा है मम्मा ही होंदा है मां मां मां और जे जिंदगी दा अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जीवन यात्रा सफल हो गई जगत ते आया सफल हो गया मां ते निकलिया और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां और मौत दे समय भी निकल

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the most, yeah, baby. Yeah.
3: Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा सब दुखे हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर कृपा जय नरको कीने तें ए जुगत पछाने नानक लीन भयो गोविंद सिंह ज्यों पाने संग पाने गोविंद विच लीन हो जाना मनुख दे जीवन दा लक्ष्य है भविष्य है और कोई भविष्य नहीं है। परिवार मिल गया है चंगा रोजगार मिल गया है धन संपदा मिल गई है तियां पुत्र मिल गए ने सब रस्ते दा पड़ा हुआ है। यात्रा दे की आंदा एक पड़ाव आया गया एक पड़ाव आया गया एक पड़ाव आया गया इस तरह संसार दे आंदा है मिलना बिछड़ना मिलना बिछड़ना होर मिलया जो मिलया बिछड़ गया होर मिलया। कितनी दफा साडे इस तरह दे संबंध जुड़ चुके हैं ऐसे घर हम बहुत बसाए। कबीर कहंदे इस तरह दे घर मैं कई वसा चुके हैं कईयां दा पिता बनया कईयां दा पुत्र बनया कईयां दा संबंधी बनया बार बार जन्म बार बार मरण। यात्री उतने चिर तक यात्रा विच रहिंदा है जितने चिर तक घर नहीं पहुंचदा। जिसनों असी घर कहिंदे आ घर नहीं है ये तन दा थोड़ा जिहा विश्राम पड़ाव है ये मन दा घर नहीं है। थोड़ा जिहा इसका मैं निखेड़ा करा प्रथम लईए तन है कि गुरबाणी नूं विचार नाल पढ़िए ते गुरबाणी ऐसा कहंदी है तन भोजन तो बिना होर कुछ भी नहीं है तन रोटी तो बिना होर कुछ भी नहीं है। भाव तन की है रोटी तुसी आखोगे मैं की आख रहे हैं। पहले देखना पड़ेगा रोटी दी अहमियत खासियत। तन रोटी तो बनया तुसी आखोगे ऐसा पढ़िया नहीं ऐसा किधरे सुनिया नहीं। गुरबाणी कहंदी है रखत बिंद कर निमया अगन उदर मजा। तन बनया लहू तो बिंद तो फिर गुरबाणी खुलासा कर दिए मां की रखत पिता बिंदारा। मां दा लहू है पिता दा बिंद है
बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, बहुत सारियां पंक्तियां। प्रश्न पैदा होंदा खून किवें बनदा रोटी तो, बिंद किवें बनदा रोटी तो और किस तो बनदा? खून की है रोटी, बिंद की है रोटी, रखत बिंद कर निमया, ये तन निमया है बने है लहू तो बिंद तो। रखत बिंद कर निमया अगन उधर मडा, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, दस मास माता उधर रखया, बाहर लागी माया, ये खून तो बने है बिंद तो बने है, खून ते बिंद रोटी तो बनता है, भोजन तो बनता है, तन बने है भोजन तो, तन बने है रोटी तो। अगर ये बनिया रोटी तो है तो जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते, बिना रोटी तो जीव ही नहीं सकता। तन नो जन्म दिता है भोजन ने, ते तन जीवदा भी भोजन दे आसरे ते, ये भी मैं अर्ज करा। गुरवाणी ने चार हस्तियां नो महान पूजनीक आख्या है। केड़ियां चार? भगत कबीर जी दा बोल है, धन गोपाल धन गुरुदेव, हे गोपाल तू पूजन योग है, तू धनता दे योग है। फिर कहने धन गुरुदेव, हे गुरु तू भी धनता दे योग हैं, तेरे करके गोपाल दा पता चलदा, नहीं ते गोपाल दा पता भी ना चले। फिर कहने धन अनाद भूखे कवल टेके, हे अन्न हे रोटी तुम ही पूजन योग हैं, धनता दे योग हैं, पेट दे च पै जाए ते गुरु भी चंगा लगदा, रब भी चंगा लगदा, नहीं ते दोवें नहीं चंगे लगदे। कबीर खुद कहंदे ने, भूखे भगत न कीजे ये माला अपनी लीजे, पहले अपनी माला, भूखियां भजन बंदगी नहीं होनी। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके। फिर एक चौथा भी पूज योग दसदे ने भगत कबीर, धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। ओ संत भी पूजनीक ने जिन्हां ने इस असलियत नू समझया कि अन्न भी पूजन योग है, गुरु भी पूजन योग है, प्रभु भी पूजन योग है। तन रोटी है, ये बनिया रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। मैं एक दफा फिर दोहराना, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहा है, रखत बिंद कर निमया, तन किवें बनदा लहू तो बिंद तो, ते लहू ते बिंद किवें बनदा रोटी तो और किस तो बनदा? भोजन तो। ये तन रोटी तो बने है, भोजन तो बना है, ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे ते, बिना भोजन तो जीव ही नहीं सकता। जीवन भर मनुख नू जिहड़ी प्रबल चिंता हुंदी है रिजक दी, रोटी दी, ये भी मैं अर्ज करदा हां, कशिश रोटी दी है। उहदा एक कारण भी है, पानी दी ते बारिश भी हुंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं हुंदी। पानी दे ते दरिया भी चलदे ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलदे। पानी दे ते सरोवर भी हुंदे ने, झीलां हुंदियां ने, सागर है
ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਕੋਈ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਜਗ ਫਿਰੇ ਚਿਤ ਬੰਧ ਨਧੇਰਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਿਜ਼ਕ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਜਣਾ ਦੌੜਨਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਰਿਜ਼ਕ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਇਹ ਖੂਨ ਤੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਖਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦਾਰਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਨ ਬਣਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਚਿੰਤਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ

करता है। ईरानी सूफी संत सादी ते इसनों होर बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान करता है। कहिंदे गमे रोजी माखुर, कोई गम तू करना है, चिंता करनी है कर ले, पर रोटी दा गम ना करें, रिजक दा गम ना करें। गमे रोजी माखुर, मजन और आके दफ्तर रा के पेशे अस्ति फल ए जद, कल को नद पस्ताने मादर रा। सादी कहिंदा है बच्चे दा जन्म बाद दे चौंदा है, मां दे अस्तना दे च रिजक दुद्ध पहले बन जाता है। के पेशे अस्ति फल ए जद, तिफल कहिंदे ने बच्चे दा, के पेशे अस्ति फल ए जद, कल कुनद पस्ताने मादर रा, मां दे पस्तान दे च, मां दे अस्तना दे च दुद्ध पहले बन जाता है, बच्चे दा जन्म बाद दे च आउंदा है। इत्थों तू शिक्षा क्यों नहीं लैंदा, रिजक पहले है, जीव बाद दे च है, जीवन बाद दे च है। गुरवाणी फिर इस तरह बयान कर दिए, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। रिजक पहले पैदा होंदा है, जंतु बाद दे च पैदा होंदा है, जीव बाद दे च पैदा होंदा है। गुरबाणी, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। मनुख नूं इस ते भरोसा नहीं आउंदा, इस गल ते भरोसा ना करना मानो परमात्मा ते भरोसा नहीं है, और वाकई परमात्मा ते भरोसा नहीं। पता है गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहंदे ने, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान ते मन प्रगट आया। तत्काल तत् उसे वक्त इधर भरोसा बज गया, इधर मनुख की समाधि लग जाती, लीन हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता है। तत् ज्ञान इस मन प्रगट आया, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया। जिथे विश्वास पूरा बज जाए, विश्वास डोलदा है, भरोसा डोलदा है, और सारी जिंदगी डोलदा है। अरदास करना सतगुरु सानू सिखांदे ने, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। की डोलदा है? भरोसा सिदक डोलदा है, रोज रोज डोलदा है, भरोसा नहीं बजदा। आज मिलिया है पता नहीं कल मिलना है कि नहीं, मैनू मिलिया है पता नहीं पुत्रां नू मिलना है कि नहीं, पुत्रां नू मिलिया है पता नहीं पोतरियां नू मिलना है कि नहीं। जिंदगी लंघ जाती है रिजक दी चिंता च, बगौर मुताला करना। उहदा इक कारण है, मनुख जीवदा जो तन ते तल ते पिया, ते जे तन दे तल ते जी रहा है, ते तन ते रोटी है, भोजन है, बनिया भोजन तो है जीवेगा भी भोजन ते आस, बनिया रोटी तो है जिंदा भी रहेगा रोटी दे आसरे ते। हुण मैं अर्ज करा, ये मन रोटी तो नहीं बनिया, ये जीव आत्मा रोटी तो नहीं बने, ये संसार का हिस्सा नहीं है। ये तन रोटी तो बनया है, संसार का हिस्सा। ये ठीक है, चूंकि प्रभु ने हर मनुख का रिजक उदे कोल नहीं बनाया, लभना पैंदा है। इस वास्ते मनुख ने बड़े उद्यम ते उपराले कीते ने, और इस तो बड़ी तामीर होई है, सारी तामीर संसार दे मनुख कोलों करवाइए। दो रोटियां ने, यह भी मैरज कर, रेलां ने, मोटर ने, गड्डिया ने, सड़कां ने, महल ने, माड़िया ने, फैक्ट्रिया ने, कारखाने ने, मसला ते दो रोटी दा और है कि सारी भजदा। जिथे मनुख है उथे ही रोटी आउंदी, फिर मनुख ने

तेल ना मिल सके, दीला दीवा ना मिल सके, ते सवेरे सूरज चढ़े है ते तू दीवा देवे किड़े काम दा, ओ मेरे किस काम दा। दरअसल वक्त सिर जो मदद है ओही मदद है, बेवक्ती मदद बेमैनी हो जाती है। इस वास्ते ये जिहड़े शब्द जुड़े हुए ने ईश्वर दे नाल कि ओदे घर विच देर है, अंधेर नहीं, दरअसले बेमैनी ने। अगर देर हो गई तो फिर अंधेर हो गया। भगत सदना जी दे इस शब्द विच इस तरह दे भाव प्रगट हो रहे ने और आप साफ कह रहे ने कि हे प्रभु, जे कर्म सिद्धांत मेरे ते लागू होया ते वाकई मैं कर्मां दी मार भोगनी है तो फिर मैं समझांगा तेरे च गुण की है। तो गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे। भारत दा सारे दा सारा जिहड़ा चिंतन है वो कर्मां दे खड़ा है। पर थोड़ा जिहा सोचिए, पहले मनुख सी कि पहले कर्म सन? अकर कीते होए कर्मा करके जन्म है, कीते होए कर्मा करके मनुख दुखी है। तो सवाल पैदा होता है, पहले कर्म सन कि पहले मनुख सी? ये तो सवाल ऐसा होया फिर, पहले मुर्गी सी कि पहले अंडा सी? आखिर गल इत्थे ही आउंदी है, नहीं प्रभु, एक तेरी लीला है, एक तेरा खेल है, ना कर्म पहले ना मनुख पहले, जैसे तू चाया वैसा जो है संसार साज देता है खेल, ते इस तो बाद तू कुछ विधान बनाए, लेकिन ए विधान भी ऐसे ने कि तेरी एक मौज, तेरी एक मस्ती। अगर कोई भगत प्रार्थना करे, निम्रता सहित जोदड़ियां करे, ते तू उसके जन्मा जन्मांतरा दे कर्मा नु धो देना, छिन दे च उसनु चैन दे देना है, छिन दे च उसनु शांति दे देना है। तो भगत सदना जी दा पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर दर्ज है और पाठक जन बड़ी श्रद्धा नाल पढ़ के बहुत वड्डा ज्ञान लेंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक ऐसे खजाने ने जिहदे च गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है, गुरु अंगद देव जी महाराज की बाणी है, गुरु अमरदास गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज के गीत ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का बैराग दे नाल भरिया होया कलाम है, उत्थे अनेकां भगतां दीयां बाणियां ने। अज तक रूहे जमीन विच ऐसा नहीं होया कि कोई धार्मिक ग्रंथ उहदे च अनेक व्यक्ति बैठे हो, इक्को ही है, इहदे च अनेक व्यक्ति बैठे ने। धार्मिक ग्रंथ सिर्फ एक भाषा विच मिलते ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक भाषा विच भी नहीं है। ते भगत वख-वख प्रांतां दे ने, ते वख-वख भाषावां विच प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु दी जो है उस्तति करदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पाठ करन वाला मुतस्बी नहीं हो सकता, क्योंकि जद फरीद नूं पढ़ेगा अल्लाह दी धुन निकलेगी, और जब जयदेव नूं पढ़ेगा वह गोविंद गोविंद कहण ते मजबूर होवेगा, नामदेव नूं पढ़ेगा ते उहदी रसना च निकलेगा ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। और इसे तरीके नाल जब कबीर नु पढ़ेगा तो फिर वो सतनाम दा रटन करेगा। गरज के ये सारे भगत वख वख नामा नु जपदे ने, वख वख बोलियां बोलदे ने, वख वख इन्हां दा चिंतन है, पर सारियां दे अंदर रब्बी रस जिहड़ा है वो इक्को है। ते गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांत है, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, सारियां नूं नाल लेके चलना ते सारियां दे नाल चलना, बस गुरु नानक दा यही आई पंथ है, यही सरमौर पंथ है। ते गुरु बाबे ने यह प्रत्यक्ष रूप विच प्रगट रूप विच करके दिखाया, सारे भगत आप दे नाल चल रहे ने, आप इन्हां भगतां दे नाल चल रहे ने। जद कहीं संसार विच ऐसा ख्याल पैदा होया कि सारी दुनिया का धर्म एक होना चाहिए, क्योंकि चिंतक ऐसा कह रहे हैं कि सारी दुनिया की राजनीति एक होनी चाहिए ताकि दुनिया में खून खराबा बंद होवे, ते चलो मन लेने आ सारी दुनिया की राजनीति एक होवे, लेकिन खून खराबे वक वक धर्मां करके भी होए ने, वक वक मजबा करके भी होए ने। फिर ख्याल आएगा कि सारी दुनिया का धर्म एक होना चाहिए, ते इहदे नाल ख्याल पैदा होगा कि सारी दुनिया का धार्म